0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online, और radio पर. शनिवार 4 जुलाई 2026 का दिन और SBS पर आप सभी का स्वागत है इस हिंदी कार्यक्रम में और आप सभी को अनीता वरार का नमस्कार भी स्वीकार हो. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वर्णजरी लोगों और उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, आइए आपको बताती चलूं कि आज कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे एक रिपोर्ट टॉयलेट में फोन्स और एक फैसल रिपोर्ट की, फैसल फरीद की भी रिपोर्ट आप सुन सकेंगे. बॉलीवुड के समाचार तो कार्यक्रम का हिस्सा होते ही हैं और इसके अलावा कुछ गाने भी आप सुनते हैं. तो यानी इस कार्यक्रम में आपकी पसंद की बहुत सारी बातें होंगी और मैं चाहूंगी कि आप कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो अपना संदेश भी मुझे भेजते रहें 0439799767 पर. और अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश. नमस्कार, शनिवार 4 जुलाई के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार. प्रधानमंत्री अल्बनीसी ने कहा, कोट, मुझे अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी का अपने एन1 लीडर्स समिट के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्वागत करते हुए गर्व महसूस हो रहा है. उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिश्ता पहले कभी इतना अहम नहीं रहा और हमारी पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक में शांति, स्टेबिलिटी और खुशहाली को बढ़ावा देती है. इसके साथ उन्होंने आगे कहा, कोट, मैं ऑस्ट्रेलिया और भारत की गहरी साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं. दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक आवश्यक इकोनॉमिक पार्टनर है. प्रधानमंत्री अल्बनीसी पिछली बार नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे. क्लाइमेट चेंज और एनर्जी मंत्री क्रिस बॉविन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया इस साल के यूएन क्लाइमेट समिट से पहले पैसिफिक क्लाइमेट फाइनेंस को चर्चा का एक अहम मुद्दा बनाने के लिए समर्पित है. फिजी और तुवालू अक्टूबर में इवेंट्स होस्ट करेंगे जिसका मकसद नवंबर में तुर्की में होने वाले COP31 समिट से पहले एजेंडा तय करना और बातचीत के मुद्दों को सुलझाना है. लिबरल लीडर एंगस टेलर लिबरल और नेशनल पार्टी के सदस्यों से वन नेशन की हालिया पोलिंग बढ़त को नजरअंदाज करने की अपील कर रहे हैं और ब्रिस्बेन में कोलिशन के कन्वेंशन में अगले फेडरल चुनाव से पहले रिबिल्डिंग पर फोकस करने को कह रहे हैं. टेलर का कहना है कि उन्हें वन नेशन के लिए वोटर सपोर्ट में बढ़ोतरी से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा. ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामनेई के आधिकारिक अंतिम संस्कार के लिए तेहरान की बड़ी मस्जिद के बाहर शोक मनाने वाले लोग जमा हो गए हैं. आधिकारिक अंतिम संस्कार कई दिनों तक चल सकता है क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को ईरान और पड़ोसी इराक दोनों के शहरों में ले जाया जा रहा है. सुप्रीम लीडर को ईरान पर यूएस इसराइल युद्ध की शुरुआत में परिवार के सदस्यों के साथ मार दिया गया था. सोकरूज के पूर्व खिलाड़ी जैक्सन इरविन का कहना है कि टीम अपने पहले नॉकआउट मैच में इजिप्ट से पेनल्टी शूटआउट में हारने के बाद बहुत दुखी है, लेकिन इस हार से टीम और मजबूत होगी. स्कोर 1-1 से बराबर होने के बाद खेल रोमांचक पेनल्टी शूटआउट तक गया जिसमें सोकरूज 4-2 से हार गए. और NDTV से मिले समाचार के अनुसार भारत में अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद अब उत्तराखंड के प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला भी चर्चा में है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई शिकायतों और देहरादून के धार्मिक संगठन भैरव सेना के शिकायती पत्र के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस मामले में संज्ञान लिया है। अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और तथ्यपरक जांच के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और श्रोताओं, बताती चलूं कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर स्वागत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया इंडिया एनुअल लीडर्स समिट के लिए मेलबर्न में मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा 8 से 10 जुलाई तक है। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये रिपोर्ट कि टॉयलेट में फोन का प्रयोग, इसके ऊपर क्या जानकारी आपको मिलनी चाहिए, सुनिए। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन। मुझे लगता है कि आपने पहले भी ये रिपोर्ट सुनी है, लेकिन एक बार और सुनिए और उसके बारे में सजग हो जाइए।
2: टॉयलेट में फोन इस्तेमाल करने से हेमरॉइड्स यानी पाइल्स या बवासीर होने का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका में हुए एक अध्ययन के अनुसार ये बात सामने आई है, यानी अगर आप लूज क्रॉलर हैं, तो टॉयलेट में ज्यादा समय बिताना आपके लिए हानिकारक है। SBS हिंदी पर यह है नबील हसन की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड शहर से डॉक्टर प्रीति सिंह, जो एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं, इस रिसर्च के बारे में हमें

0: आसान शब्दों में समझा रही हैं।
1: मैंने देखा वो रिसर्च, इंटरेस्टिंग रिसर्च है। देखिए, ये जो रिसर्च है ये डायरेक्टली आपका कॉज और इफेक्ट का रिसर्च नहीं है, दिस इज मोर की कोरिलेशन। आप कोई एक्टिविटी करते हो तो उसके आपके डिजीज के रिस्क बढ़ जाता है कि नहीं। सो आई थिंक ये जो रिसर्च इज गुड, सही बात है। व्हेन यू सिट ऑन टॉयलेट, देखिए आपके चेयर में बैठने का तरीका और टॉयलेट में बैठने का तरीका दोनों डिफरेंट होता है। आपका जो पेल्विक फ्लोर होता है उसमें आपका कोई सपोर्ट नहीं होता है व्हेन यू आर ऑन टॉयलेट सीट। तो कैसा होता है, जो रेक्टल वेन्स हम कहते हैं विच यूजुअली आर अराउंड आर बॉटम, वो इफ यू सिट देयर फॉर लॉन्ग टाइम स्लोली वो स्वेलिंग हो जाता है, और जो कंटिन्यूस क्रोनिक आपका इन्फ्लेमेशन होता है तो वो जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे धीरे धीरे चला जाता है। फिर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या होगा, उसमें एनी लिटिल स्ट्रेन, आप कॉन्स्टिपेशन हुआ है या फिर आपने एक्सरसाइज कर लिया या प्रेगनेंसी हो गई, तो उसमें वो हेमरॉइड्स फिर डेवलप हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ सिटिंग एंड स्पेशली सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट बींग अवेयर ऑफ कि क्या कर रहे हो आप, ये रिस्क आपका बढ़ जाता है।
0: अमेरिका के एक नए अध्ययन में जो पीयर रिव्यूड प्लॉस वन जर्नल में प्रकाशित हुआ है, उसमें 45 वर्ष और उससे बड़ी उम्र के 125 लोगों का सर्वे किया गया। ये लोग बॉस्टन के एक अस्पताल में कोलोनोस्कोपी करा रहे थे। उनसे पूछा गया कि वो टॉयलेट में फोन का उपयोग कितनी बार और कितनी देर तक करते हैं। सर्वे में पाया गया कि प्रतिभागियों में से 66% टॉयलेट में स्मार्टफोन का उपयोग करते थे, और ये लोग टॉयलेट पे फोन ना इस्तेमाल करने वालों की तुलना में लगभग 5 मिनट से अधिक समय टॉयलेट में बिताते थे। इसमें सबसे आम गतिविधियां न्यूज चेक करना और सोशल मीडिया का उपयोग करना थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि स्मार्टफोन का उपयोग अनजाने में टॉयलेट पर बिताए समय को बढ़ा सकता है, जिससे एनल टिश्यूज पर दबाव बढ़ सकता है और हेमोरॉइड्स का खतरा हो सकता है।
1: मोस्टली ये जो स्टडी किया गया है, देखिए एक हम कहते हैं कि हम ना इसको सिलेक्शन बायस भी कहते हैं जब हम कोई स्टडी कहते हैं, तो ये स्टडी किया गया है उन लोगों में जो कोलोनोस्कोपी के लिए आए हैं, दोज पीपल हु हैव कम टू हैव अ सर्वेलेंस कोलोनोस्कोप, जिनको मोस्टली हम कोलोनोस्कोपी तभी करने जाते हैं जब हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। तो एक सिलेक्शन बायस है इसमें कि पेशेंट को शायद कुछ प्रॉब्लम था, तो आपके मोस्टली लोगों को जिनको गट की इश्यू हुई होगी वही लोग कोलोनोस्कोपी करने आएंगे। सो देयर इज अ बायस, बट प्रोलॉन्ग सिटिंग लाइक ये डेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग टाइम रिसर्च किया गया है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन लीड टू हेमरॉइड्स। जब हमारे पेशेंट आते हैं और जिनको हेमरॉइड्स होता है, हम बोलते हैं आप घूमो फिरो या फिर लेटो ऑन योर टमी और लाई डाउन। अगर आप ज्यादा देर बैठोगे कहीं पे भी तो आपके हेमरॉइड के चांसेस बड़े हो जाते हैं। डेफिनेटली टॉयलेट सीट में द प्रॉब्लम इज कि पेल्विक फ्लोर पे आपका कोई सपोर्ट नहीं रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स देयर इज लाइक अ डोनट, तो उसमें आपके रिस्क ज्यादा हो जाते हैं। और आजकल के जमाने में जहां हम लोग फोन बहुत यूज कर रहे हैं, लाइक देयर पीपल हु सिट ऑन टॉयलेट फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स, वहां पे आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग कि एक इनिशिएटिव लिया गया है फॉर पीपल टू स्टॉप यूजिंग फोन एंड स्टॉप स्क्रॉलिंग डाउन और इवन सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टडी, बट देयर हैज बीन लॉट मोर स्टडी डन इन पास्ट रिगार्डिंग प्रोलॉन्ग सिटिंग।
0: डॉक्टर प्रीति सिंह आगे बताती हैं कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में फोन का अत्यधिक इस्तेमाल कई अन्य बीमारियों का कारण भी बन सकता है।
1: देयर आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट इवन काउंट ऑन योर फिंगर्स, लाइक बेसिक कॉमन थिंग, लाइक हम देखते हैं टीनेजर्स, लाइक आई टॉक अबाउट दिस एवरी डे टू माई पेशेंट, कि लोगों को आते हैं, लोग को हाथ में दर्द होता है, रिस्ट में पेन होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें आपकी नर्व थोड़ी दब जाती है बिकॉज यू आर होल्डिंग योर हैंड इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं डी क्वेरविन टेनोसाइनोवाइटिस, विच इज बेसिकली आपका जो टेंडन है, थंब का जो टेंडन है वो स्वेलिंग हो जाता है, और आप बिकॉज पीपल होल्ड ऑन टू अ फोन, जो बड़े फोन होते हैं आप उसको पकड़ के बैठे रहते हो, तो आपका जो थंब है वो काफी देर तक स्ट्रेन में रहता है। और फिर बच्चे आप देखते हो टीनेजर्स में आते हैं, बोलते हैं दर्द हो रहा है, एंड देन एज यू डू द टेस्ट यू रियलाइज कि हाँ ये तो डी क्वेरविन है। आप क्वेश्चन पूछते हो तो पता चलता है कि फोन पकड़ रहे हैं, 4-5 घंटे तक फोन पकड़ रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग। फिर आपका शुरू होता है नेक पेन, शोल्डर पेन, क्योंकि आप होल्ड कर रहे हो इतने देर के लिए, एंड देन अगर आप फोन देख रहे हो 4-5 घंटे तो आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, यू आर यूजिंग दैट टाइम ऑन दिस। सो इट इज इट इज लाइक ए फ्लो इफेक्ट. फिर मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है आपका, आप एक्टिविटी नहीं करो, मेंटल हेल्थ जो विच कैन इम्प्रूव बाय गोइंग एंड एक्सरसाइजिंग, यू आर स्पेंडिंग दैट टाइम ऑन अ फोन on what we call as just nonsense scrolling. There is nothing you're learning from it. There is nothing we are going to get benefit. And most of the time, you're not even using your brain. Jab aap phone use kar rahe ho, aapko sirf scroll karna hai, time barbaad kar rahe ho. So it is not just hemorrhoid. Hemorrhoid is just choti si ek, definitely it's a big problem for people who have it. But ye ek ke baad, ek ke baad, ek ke baad, aap dekhte rehte ho. Chote bachcho mein, aap dekho, they're addicted. बड़े में भी एडिक्टेड होते हैं, पर छोटे बच्चों में ऑब्वियसली देयर ब्रेन इज डेवलपिंग, उनका कुछ रेगुलेशन नहीं होता, दे डोंट नो हाउ टू रेगुलेट देमसेल्फ, एंड दे आर लर्निंग इट फ्रॉम यूट्यूब, यूट्यूब किड्स, व्हिच इज सो डेंजरस.
0: हेमोराइड्स की पहचान कैसे होती है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए, वो आपके लक्षणों के बारे में पूछेंगे और सूजे हुए ब्लड वेसल्स को देखने के लिए आपके एनल पैसेज की जांच करेंगे. प्रोफेसर रूपर्ट लियोंग, जो सिडनी के कॉनकॉर्ड हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, बताते हैं कि जनरल प्रैक्टिशनर से मिलना इस बात की पुष्टि करने में भी मदद कर सकता है कि कोई गंभीर स्थिति जैसे बाउल कैंसर तो नहीं है.
2: The symptom of hemorrhoids is very non-specific. So passage of red blood can be something benign as a hemorrhoid, or it can be something more sinister that includes a bowel cancer. So anyone who's got a bleeding in the bowel should present to the general practitioner, who will then perform an external examination.
0: SBS News के पेगी जेकोमोलॉस की ये रिपोर्ट SBS हिंदी पर आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने. इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है. SBS ना ही यहाँ प्रकट किए गए विचारों से सहमत है और ना ही असहमत. अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लें.
3: तो आप सुन रहे थे ये रिपोर्ट, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बराबर सलाह लेते रहें. अब समय हुआ है एक अंतराल का, मिलती हूँ इसके बाद में.
4: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
5: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
6: For centuries, Vishnu has taken many forms to restore balance when the world needs it most. Now these stories of heroism, love and devotion are brought to life at the Art Gallery of New South Wales. Avatar, Forms of Vishnu gathers centuries of exceptional art depicting stories of Vishnu from collections across the world. Alongside these historic works, four contemporary artists have created new pieces made especially for this exhibition. 20th of June to 5th of October 2026. Book now. artgallery.nsw.gov.au.
7: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम, और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार. श्रोताओं, आगे कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे बॉलीवुड की खबरें और कुछ गाने भी, लेकिन अभी आइए सुनते हैं फैसल फरीद द्वारा भेजी गई ये रिपोर्ट.
8: वृद्धावस्था जीवन का एक ऐसा काल होता है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से काफी कमजोर हो जाता है. इसके बावजूद इस अवस्था में भी व्यक्ति को सामाजिक

0: मानसिक और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। एक प्रमुख समर्थन का साधन पुनः विवाह हो सकता है, जो वृद्धजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वृद्धावस्था में कई व्यक्ति अकेलापन और अवसाद का सामना करते हैं। जीवन साथी के निधन के बाद या फिर बच्चों के अपने जीवन में व्यस्त होकर अलग होने के कारण वृद्ध व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से भारी संकट का सामना करना पड़ता है। पुनः विवाह इस खालीपन को भर सकता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। यह अकेलेपन को कम करता है और व्यक्ति को एक नए रिश्ते में आत्मीयता और सहारा प्राप्त होता है। भारत में पुणे के रहने वाले माधव दामले एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो सीनियर सिटीजन्स के जीवन में एक बार फिर से आशा की किरण जगा रहे हैं। हैप्पी सीनियर्स उनकी संस्था है जिसके माध्यम से वो ऐसे सीनियर सिटीजन्स का पुनर्विवाह करवा रहे हैं। अब तक वो 90 ऐसी जोड़ी बना चुके हैं। सुनने में ये बात छोटी लगे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी हमारे समाज में वृद्धजनों का पुनर्विवाह इतनी आसानी से नहीं लिया जाता है। बच्चे उनकी अपनी कहानी, रिश्तेदार उनके अलग व्यंग, फिर समाज और सबसे ज्यादा वित्तीय जिम्मेदारी, रोज का खर्चा कैसे सबसे निपटा जाएगा। लेकिन सोचिए, जिन माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर बच्चे को इस लायक बनाया कि विदेश में जाकर वो बस गए, लेकिन अब उन्हीं के किसी एक पेरेंट को अगर एक साथी की आवश्यकता होगी तो कैसे होगा, कौन इस अकेलेपन को भरेगा इत्यादि। ऐसे में माधव सर का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। माधव जी अपने बारे में बताते हैं।
1: बेसिकली मैं पुणे का रहने वाला हूँ, पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं। 1999 में मैं लायंस क्लब का प्रेसिडेंट था। तभी एक मेला लिया था हम लोग ने, तो मैट्रिमनी के बारे में। उसमें से एक आइडिया है कि जो सीनियर सिटीजन्स है तो उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि उनके बच्चे लोग अभी आजकल तो बहुत बच्चे लोग फॉरेन में गए हुए हैं, बहुत लोग दूसरी जगह रह रहे हैं। तो जो सीनियर्स जो है और अगर सिंगल है तो उनका प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। तो तभी से मैंने सोचा था, लेकिन एक्चुअली चालू करने में मेरे को 2012 साल निकल गया मेरा। 2012 साल में फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया ज्येष्ठ नागरिक लिव इन रिलेशनशिप मंडल, जो सिंगल सीनियर्स के लिए काम करता था। और बाद में स्टार्टिंग में तो बहुत लोग का अपोज भी था, लेकिन कुछ दिन के बाद में लोगों को समझ गया कि ये आगे जाके एक्चुअली जरूरत है लोगों के लिए। तो बाद में 2015 साल के बाद में अच्छी तरह से सेट हो गया हमारा ये मंडल। बाद में उसका नाम चेंज करके हमने हैप्पी सीनियर्स बोल के उसका नाम दिया।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि माधव जी मात्र एक मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वृद्धजनों के जीवन में पुनर्विवाह न केवल उनके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बना सकता है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। एक नया जीवन साथी वृद्ध व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और संतुष्टि ला सकता है, जिससे वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। माधव जी को इस काम को करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। क्या दोनों साथी जीवन भर साथ दे पाएंगे?

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: बेसिकली हम लोग कैसे करते हैं, पहले काउंसलिंग ये हमारा मेन पार्ट है. कोई भी हमारे पास आया तो बेसिकली हम लोग काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग के बारे में बाद में एक्चुअली देखते हैं कि रियली वो सिंगल है कि नहीं. बहुत टाइम ऐसा होता है कि आदमी सिंगल नहीं रहता है या औरत भी सिंगल नहीं रहती है, लेकिन वो बताते हैं कि मैं सिंगल हूँ, मेरा डिवोर्स नहीं है, हुआ नहीं है, लेकिन मेरे को करना है, मेरे को सामने वाला डिवोर्स नहीं दे रहा है. और एक चीज रहती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैडम एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर सीनियर्स को साथ में लाना है तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो एक्चुअली एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं. अगर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है तो एक दूसरे के साथ में रहना भी मुश्किल है, तो वो भी हम लोग देखते हैं पहले. तीसरी बात है कि बच्चे लोग से परमिशन लिया है कि नहीं, या बच्चे लोग को इन्फॉर्म किया है कि नहीं. अगर इन्फॉर्म नहीं किया रहेगा तो बाद में घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वो भी हम लोग देखते हैं. तो जनरली मॉडल ऐसा है कि एवरीथिंग हम काउंसलिंग के माध्यम से मालूम करने के बाद में ही सब काम करते हैं. नहीं नहीं, हम लोग पैसे के बारे में कुछ नहीं करते. एक दूसरे ने एक दूसरे के साथ में वो करना है, हम लोग खाली कैसे करते हैं, एक दूसरे से पहचान करके देते हैं. उसमें हम लोग कुछ पिकनिक निकालते हैं, एक दो तीन दिन का ऑर्डिनेट स्टे ट्रिप निकालते हैं, उसके साथ में मैक्सिमम लोगों को साथ में लाने की कोशिश करते हैं. और वो साथ में लाने के बाद में अगर दूसरे को एक दूसरे को लगता है कि मैं उसके लिए मैच हूँ, तो ऑफिस में आके हम लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं. और फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो सब एक दूसरे, हम लोग फाइनेंशियल इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करते. खाली उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर जो औरत है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं, क्योंकि पैसा है लेकिन वो बच्चे लोगों के पास है, बच्चे लोग उनको हेल्प नहीं करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा अलग मॉडल हमने डिसाइड किया है कि जो जिसके साथ में वो रहेगी तो उसने कुछ ना कुछ डिपॉजिट उसके नाम से करना है कि वो सिक्योरिटी के लिए. उतना ही खाली देखते हैं, बाकी हम कुछ नहीं देखते. और एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करके लेते हैं हम दोनों में से. तो एग्रीमेंट ऐसा रहता है कि अगर कुछ मिसशीव किया मेल ने तो वो फीमेल के जो डिपॉजिट है वो फीमेल को पूरा उसको उसके पास जाएगा. अगर फीमेल ने कुछ डिस्टर्बेंस किया तो उसका पैसा उसको वापस मिलके दोनों अलग हो जाएंगे, वो एक देखते हैं हम लोग. लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. अभी यही साल में हमारा 90 जोड़ी बन गया, उसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक हमको.
3: भारत जैसे समाज में वृद्धजनों के पुनर्विवाह को लेकर कई सामाजिक भ्रांतियां और पूर्वाग्रह होते हैं. हालांकि समय के साथ सामाजिक सोच में बदलाव आ रहा है. अब अधिकतर लोग यह मानते हैं कि वृद्धावस्था में पुनः विवाह एक सकारात्मक कदम हो सकता है जो व्यक्ति की खुशहाली और मानसिक शांति में योगदान करता है. इसे एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के किसी भी चरण में हो सकता है. यकीन मानिए, माधव जी ने जिनका भी पुनः विवाह करवाया है उनमें से अधिकतर इनसे मिलने आते हैं, और ये सब एक परिवार के सदस्य हो चुके हैं और इनका ये परिवार बढ़ता जा रहा है.
2: अभी आप देखो कि 4 या 5 चैनल्स पे वो मुलाकात होगी. सब हमारे जो जोड़ी बन गए वो लोगों की भी मुलाकात लेते हैं. वो सोनी टीवी में जो गाने का प्रोग्राम रहता ना, उसमें भी हमारे एक जोड़ी को इंट्रोड्यूस किया था, और उनका हम लोग गेट टूगेदर करते हैं साल में एक बार, तो लोग आते हैं, मिलते हैं. हमारा रिलेशन उनसे बहुत अच्छा बन गया है, घर जैसा ही है. लोग आते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं. कुछ लोग बिल्कुल नहीं आते, लेकिन 60-70% लोग तो आते ही है.
3: हमें समाज में वृद्धजनों के पुनः विवाह को समझने और समर्थन देने की आवश्यकता है ताकि वे अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकें. माधव जी का कार्य इस कारण सराहनीय है क्योंकि कोई व्यक्ति वृद्ध हो सकता है लेकिन प्यार नहीं, उसे सहारे की आवश्यकता हमेशा रहती है. लखनऊ से फैसल फरीद.

0: हमारे श्रोता कुमार जी को फोन और टॉयलेट की रिपोर्ट अच्छी लगी है, तो कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र जी आपकी पसंद भी नोट कर ली है। मिलती हूँ आप सबसे इस अंतराल के बाद।
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर।

0: हमारा पेज लाइक करें SBS हिंदी फेसबुक पर भी है
1: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार आइए श्रोताओं चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में और वहां की ये समाचार सुनते हैं
2: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम बॉलीवुड टाइम में आपका स्वागत है मैं हूं नेहा बॉलीवुड टाइम में सबसे पहले बात करते हैं फिल्म हेरा फेरी 3 की फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन अब कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं है खुद प्रियदर्शन ने भी इस बात की पुष्टि की है उन्होंने ये भी आशंका जताई कि कई कानूनी विवादों और आपसी मतभेदों के चलते ये फिल्म

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: जोड़ते हुए देखा जा रहा है. कंस्ट्रक्शन के बाद सलमान पूरे परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे. बांद्रा में बनने वाला नया 6 मंजिला घर समुद्र किनारे होगा, जो सलमान खान के मौजूदा निवास गैलेक्सी अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर स्थित है. फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने सिनेमा घरों में अपनी रिलीज के 100 दिन सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं. फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, बल्कि इसने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी व्यूअरशिप के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं. इस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 1813 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की शानदार कमाई की है. ये फिल्म दंगल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. निधि दत्ता ने फिल्म बॉर्डर 3 का ऑफिशियली ऐलान कर दिया है. इस फिल्म में वीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह की कहानी दिखाई जाएगी. वो भारतीय सेना में एक सीनियर जनरल ऑफिसर थे. 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई थी. बता दें कि हरबख्श सिंह को पंजाब का रक्षक माना जाता है. अब लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह की लाइफ को पर्दे पर दिखाया जाएगा. सनी देओल तीसरी बार भी इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे और दर्शकों का दिल जीतेंगे. महाराज म्यूजिक के बैनर तले रिलीज हुआ नया म्यूजिक वीडियो जू दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इस गाने का निर्माण और निर्देशन अश्विन महाराज ने किया है. गाने को मशहूर गायिका शोना गोंसालवेस ने अपनी आवाज दी है. जगत में इन दिनों सच्ची और संवेदनशील कहानियों को बड़े पर्दे पर उतारने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. इसी कड़ी में निर्माता विजय कुमार अपनी आगामी फिल्म डीजीपी कश्मीर को लेकर पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर की खूबसूरत और बर्फीली वादियों में शुरू होने जा रही है. निर्माता विजय कुमार ने कहा, हमने सेना और सुरक्षा बलों की बहादुरी के कई किस्से सुने हैं, लेकिन कश्मीरी पुलिस के उन स्थानीय जवानों के योगदान को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, जिन्होंने देश और नागरिकों की हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी. शाहरुख खान ने हाल ही में सिनेमा में 34 साल पूरे कर लिए हैं. वो इतने मशहूर हो चुके हैं कि फैंस उनसे जुड़ी छोटी से छोटी चीज भी जानना चाहते हैं. शाहरुख खान मंगलुरु में एक इवेंट में शामिल हुए. इवेंट के दौरान शाहरुख ने अपनी जेब से बचपन की एक पुरानी तस्वीर निकालकर बताया कि ये मेरे बचपन की एकमात्र तस्वीर है जो मंगलुरु में ली गई थी. मैं बिना कपड़ों के एक बाल्टी में बैठा हूँ. शाहरुख ने अपने बचपन के शुरुआती 5 साल मंगलुरु में अपने नाना इफ्तिखार अहमद के साथ बिताए थे. शहर के साथ उनके इस जुड़ाव ने इस पल को खास बना दिया. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर का मानना है कि भारतीय सिनेमा अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां किसी फिल्म की पहचान उसकी दमदार कहानी और किरदारों से होती है. फिल्म अल्फा को लेकर उन्होंने कहा कि ये फिल्म पारंपरिक सोच को तोड़ते हुए 2 महिला कलाकारों को बड़े एक्शन स्पेस के केंद्र में रखती है, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है. वेलकम टू द जंगल के मेकर्स ने फिल्म का नया गाना तेरा पैसा मेरा पैसा रिलीज कर दिया है.
6: मेरे पैसे को जो देखे पीट दूं मैं उसको लेके, कर लो चाहे जादू टोने मुझसे ना ये पैसे छूटे.
5: हैवान में सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि सैफ अली खान भी उनके साथ नजर आएंगे. फिल्म के जरिए दोनों एक्टर्स 18 साल बाद साथ में स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. इससे पहले आखिरी बार दोनों एक्टर्स 2008 में रिलीज हुई फिल्म टशन में साथ दिखाई दिए थे. फिल्म हैवान 2016 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म ओप्पम की रीमेक है. अक्षय इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाते नजर आएंगे. फिल्म इस साल 11 सितम्बर को रिलीज होने वाली है. फिल्म बेबी डू डाई डू, जिसमें अभिनेत्री हुमा कुरैशी भारत की पहली देसी हिट वुमन के किरदार में नजर आएंगी, अब फिल्म का ग्लोबल थिएट्रिकल विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत इसे जीसीसी देशों ऑस्ट्रेलिया और एम्स्टर्डम क्षेत्रों में भी रिलीज किया गया. फिल्म 3 जुलाई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. म्यूजिक कंपोजर यार रहमान को अमेरिका के वॉशिंगटन में एक समारोह में अकादमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है. रहमान ने एक्स पर एक पोस्ट पर मशहूर फिल्ममेकर पीटर जैक्सन से मिले गोल्डन प्लेट अवार्ड की तस्वीरें शेयर की. यार रहमान ने लिखा, अकादमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड पाकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. देश के सबसे

चर्चित स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम के जीवन पर आधारित कोर्ट रूम ड्रामा प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी का दमदार टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे राजकुमार राव एक बार फिर अपने एक ऐसे अवतार में दिख रहे हैं जो सीधे दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म की कहानी उज्जवल निकम के पूरे करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण और हाई प्रोफाइल दौर के इर्द गिर्द बुनी गई है। कहानी का मुख्य केंद्र 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले और जिंदा पकड़े गए इकलौते आतंकी अजमल कसाब का वो अदालती ट्रायल है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना ओ मेरे बलम आखिरकार रिलीज कर ही दिया गया।

0: सब पानी कम। बॉलीवुड टाइम में आज बस इतना ही, बाय बाय।
1: तो श्रोताओं, आप बॉलीवुड की खबरें सुन रहे थे और आपने कुछ नई बातें भी जानी होंगी। आइए, हाँ, इस बीच में हमारी श्रोता हेमलता जी का संदेश भी मुझे मिला है। हेमलता जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और आप कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं हमारे श्रोता राजेंद्र वोहरा जी की पसंद पर ये गाना। गाना थोड़ा पुराना है लेकिन ये चूंकि उनको पसंद है और मुझे लगता है कि इस गाने में एक बहुत ही सीख भी है। और जिन लोगों ने पहली बार अगर ये गाना आप सुन रहे हो तो पहचानिए तो भला कि ये किसकी आवाज़ है।

0: ¿Qué es Spectrum Internet? Es el Internet confiable para navegar, jugar y hacer streaming a tu manera. También es la seguridad que necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un Internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, GEICO can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to GEICO.
4: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
5: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। आइए श्रोताओं, एक गाना सुनते चलते हैं अब, और इसे हमारे श्रोता पीयूष जी सुनना चाहते थे, तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आज वो कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। इस फिल्म का वो कोई भी गाना सुनना चाहते थे, तो उनके लिए ये गाना तो बजा रही हूं। अगर वो कार्यक्रम सुन रहे हैं तो अवश्य मुझे बताएं, और बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस फिल्म का गाना है।

जी हाँ, ये गाना था फिल्म देवदास का। और हमारी श्रोता अमिता, राजीव जी, शिवू जी और एक और श्रोता जिन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब तो मुझे लिख भेजा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप चाहे इसी समय आपने अपने संदेश भेजे लेकिन आप कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, और उम्मीद कर रही हूँ कि कार्यक्रम आपको अच्छा लग ही रहा होगा। चलिए एक और गाना सुनते हैं। और अब इस गाने के लिए मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी कि ये कौन सी फिल्म का गाना है और इसके कलाकार कौन हैं। कलाकारों को याद कीजिए और फिल्म को भी याद कीजिए, देखिए आपको याद आता है।

जी हाँ, हमारी श्रोता शिबु ने इस गाने को पहचाना है कि इसके कलाकार कौन से थे। जी, कलाकार थे अनिल कपूर और शिबु, और फिल्म का नाम था विरासत। और आइए श्रोताओं, अब चलते चलते एक और ऐसा ही गाना सुनते चलते हैं। गायक दोनों वही हैं जो अभी आपने इन गानों में सुना, लेकिन कलाकार बिल्कुल अलग हैं, फिल्म भी अलग है। क्या आपको ये फिल्म और कलाकार याद है? बताइएगा मुझे।

सही था, आपने सब लोगों ने पहचाना है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं हरिदयाल जी, देवेशी, मेघना, योगेंद्र, आप सब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी। अगली मुलाकात तक के लिए अनीता बराड़ का नमस्कार, आपको छोड़े जा रही हूँ इसी गाने के साथ।